0: मी आर गाडिंग फाती फास्कड थिरीस मी दिव्य राज्य गाडो
1: अलगुण मेंगे प्रोग्राम तंग हम चीफा वागो तुम दिन गिनस्ते नी कीरित कुरान के दिव्य तर्जमा कीरित कुरान के दिव्य तर्जमा मी दु गिनस्ते नी सूरत नूह फशायगन सूर निम्मा सूरत जिन्नी फशायगन सूर निम्मा सूरत मुज्जम्मिल फशायगन सूरत के सादवन आयतु गनियला तर्जमा विदाल दिवाफावनी डॉक्टर मोहम्मद हनीफ
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله جئ اسم فلوم فشاگنمي

कहने को तो है ये दो लफ्जों की कहानी, बसर कर जाती है इसमें तमाम जिंदगानी।

गम और खुशी का हिसाब रखे तो जिंदगी बहुत छोटी है। बहते लहरों की गिनती कभी आसान होती है?

0: हांगार अंगार दो मिंदुल कुरी इकार गड़ फणा रहें रिपीट एरे दिया गड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो गेरे मिंदम बार गड़ तिरी हूं
1: हांगार हम एकनी दिवे राज्य चाड़ू
2: दारीने की मैं अल्लो हवाल करवा फावा अमाना थे
3: दारीने की मैं मफेंगे लोलो के फिनिकं
2: ए दारीने हियो मकु दक्के दिन मकी मैं मफेंगे जिम्मा
3: ए हित्तकुके मामेला मिली ए हित्तकुके मामेला मिली ए हित्तकुके मामेला मिली
4: बुरास्वती दोहगे मेंदुरु तेज जहायरु रिपीट हुकुर दोहगे रेगनु दिहे जहायरु आदि होनहिर दोहगे मेंदम एके जहायरु
5: इत्तकुगे मामिला मिली

0: मुन्ना कोबा की है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में क्या दक काफुंग अता
2: मुन्ना थी है बरको वेंडा हिंका में ने अफन तिकन कोलन
1: तिकु दुं हाउदा है रंगल है तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकांकां को देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे